0: Sorkar damdo ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: प्यारे श्रोता, ये एफएम जो वॉइस और शिमला साथ है और मैं हूँ आपकी आरजे सांपुई, फिर वापस आप सभी के लिए। आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एफएम जोए में और इस प्रसारण में हमें नमस्ते लंदन रोड और तेरे लिए फिल्मों से लिया गया गीत सुनने को मिलेंगे। और यहाँ पे सबसे पहला गीत रहेगा तेरे लिए फिल्म से लिया गया गीत हमने तुमको दिल, और ये गीजे आप सभी एफएम लिसनर्स के लिए है। तो इस गीत के साथ इस प्रसारण की शुरुआत करते हैं।

अभी जो हमने मसा गीत सुना है वो है कैसी तन्हाई, रोड फिल्म से लिया गया गीत है। आपके संदेश की ओर बढ़ते हैं। और हे इन एस एम एस ते अलाउ थिंगनोल तो मैं अकन हंसियार जर जर तुर आंगाइला ngakte pabil khatli hian arje sangpi namaste ihla ple le tur kha par pari pu omega sangte ya vi kung te a moya site lo rama tu iria le tan karon hlane ngakte pabil khatli hian ran tia o अभभत शुक्रिया जेल अल्जाम आलो लंगा नि हन हेलो वार जे सांग पे नमस्ते सुप्रभात रंती ने जी आपका भी नमस्ते व इन ड्यूटी नुआम ओ रंतिया ओ नंग नंग मानी हो ने ना हुन कन मंग छौजेल थे दो ने इजान मो कन नि मन दान ते पो नुआम छौजेल तुरा हन गाई ला तेरो 8731083056 संदेश आई है ओ मारे मा अनिया अनिहान अवन नल छेंग छेंग ए मरंतिनी ओ बुलचन नते फु छौदोन रिया वतरो लमोय तक तक कनन लति छुआक जेल दोना सुवांग छुआनिन एंगे छुइन ए पातिले छुल शंग शंग अजिंग लमा ति तोरते इन ति पा खानिन एफ एम जोय लो ngai thlau la ngai thla kha lo du tok mai lo la एंगे एस एम एस रन थोन खा लो मै लो तोरिन कसोम नन ले दु जेवनी अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगला गीत रहेगा खामोशिया फिल्म से लिया गया गीत बातें ये कभी ना और ये गीचे खास करके मारे मजे लजा मंगाते पाबिल खटलियर ले लान रन थन सकता जोंग जोंग ते इन तान नी से और वी कुंग ते पोहे रन लंग नल मे मासे नेक्स्ट सियारतान कन लखे क्रियांग। तो इस गीत का आनंद लेते हैं बातें ये कभी ना।

Ya bir abkesin diye şey hem mamuni rumlot se ani yanin aji sang pui kolumdan em hi garam masala e ngar ngar kani lumle to klavot kha ngai ni arantia o lamoi tak tak kan ran lati chuak dona la kul de rai kha ran ti chuak lo tu mang o a cheng sengs lu to kichu a masala nen zong zong yan a in cho be fu thei lu to ka tero a fu le ma ma china kan zaw lo lek lek china o vi kung te a kanau sial hi aran langa ani yan aje sang pui play Turka pichong ichong thu te chung kwa tan o arantia athan sak tu mai lawin kan ti teng o again vi kung te kanau sial tan khan ni box se next kan play le turi par pari pu lo langa ani hian arje sang pui kalawnga i thave man chia ya ilet lai lawania o hei hun minute som ni cha kan le neya lamoi tak tak kan ron la ti chuak dona ani hianin izaiti le tur khaming moite angakte pabil khatlir good boy jail zamate longai thakata le nangma mai lewin narantia bhat bhat shukriya lati minun thlan sak ve du china ka ban lom em a nge ve in hun kan mang nuam chodon ri amin ka sha in a mistake kan ngai luwa o lo thon zel tur khan kan som se oni अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला गीत रहेगा श्रिया घोषल और अरिजीत सिंह की आवाज में रबता और ये कीजिए खास करके पार पारिपू वी कुंग ते मामुनिरम लोते लार रंगलन सकता जोंग जोंग तेले तुन हुन एफएम जो ओय हुन चन चन चंगा लाऊंगा इतलाते इनो मनी दी कन श्या वेन हुन माम तक इन मन थे ना दूसर न कन लांचे उन्हें तो इस गीत का आनंद लेते हैं रबता श्रिया घोषल और अरिजीत सिंह की आवाज में

अभी जो हमने मस्सा गीत सुना है वह है राबता, श्रिया घोषल और अरिजीत सिंह द्वारा गीत था। यहाँ पे आपके संदेश आए हैं एलजेड साइलम अनिहन वाय थनिलेंग लेलानी मैलोम हथोपा इन आर जे एस पी रोनतिया निये तेरो चुल छंग छंग इन ती तुर जोंग जोंग ते त्वांग तक इन ती थे नान खान आदु सकन कन लान से वा एफ एम जो लो लौंगाई था खा मई लौ तुर खान कन सोम हाल से उन्हें एली खोल छिंग लो लंगा आर जी सांग पुई जाती ले तुर खा रम तुई रियल कैंसर दम दोइना ओ मेक तान ओ बोई ती नुले पाते अरुण दिया ओ दम लौते हन लौ दम थुआई थे नान दु सकना लान सुंगिन नेक्स्ट सेकंड प्ले ले तुर ही अंता नी से गुड बॉय लो लंगा आर जी एस पी ए पोर्टा ए इलो लन तिर चंग खान कलो सितार हाल से लौ दिया गुड बॉय हिचु फेल वे शिम शिम मो वोइन थ्वांग तका duty turin ka du sak chen next ngak te pa meng moi te pa ku nga lal din pu ya fal kon veng lai vi kung te omega sang te ramat tui real o bracket a hen allow them thoi the na na ran ti ya nang le duty pu te tan po o ran ti bo kani an ye ram po allow them thoi thoi se du sak na kan lana ni durgesh nagan pu sa sande sha he ani hen good morning arj namaskar have a nice day ran ti ya bal bal shukriya hum aasha karte hai ki aaj aap hamare sath fm zoe mein bane rahenge हमारे पास ठीक 15 मिनट है अभी और मिनट सोम पंगा वेल कन लेने ला प्रथम वेल चुकन लगाई थे तो रंगाई ला नेक्स्ट सेकंड प्ले लेट तुर ही यहाँ पे अगला गीत रहेगा श्रिया घोषल की आवाज में अगर तुम मिल जाओ और ये गीजे खास करके दुर्गेश नगन पुर गुड बॉय अली खोल शिंगल जित साई लो पार पार रिपोर्ट वी कुंग ते एस एम एस टाइप में ते एस एम एस छत तक रन थन थे नान ओ ले लाइन रन थन सक तक जोंग जोंग ले थंग तू जोंग जोंग ते इन तान नी से तो इस गीत गान लेते हैं अगर तुम मिल जाओ।

यहाँ पे आपके संदेश आए हैं से पाले मीनू खचू लव इन साई लव शाम ते ओ सर गुड बॉय खान लव श्या से रंतिया गुड बॉय हन इन लो मुसान्योम ज्याजांग हन मो इंगे थलाक ते रन थो ना आर जे एस पी तुकिन थलाक ओ एस एम एस अतलेम दे उत्सवान लव सोई से रु ओ कंगा ते मैं या रंतिया ओ मई अन्य ओम तक है समय थर लाम दे उदे उदे रन थो ना vi kung te ta na ni ka ring hei cho mo समय आ गया है इस प्रसारण के आखिर गीत का और यहाँ पे अगला गीत रहेगा सुन जरा लकी फिल्म से लिया गया गीत का आनंद लेते हैं और ये गीत जो आप सभी एफएम लिसनर्स के लिए है तो उन सेगमेंट लौंगा हुआ एस एम एस लौथन जोंग जोंग ते लौथन वे मन से लो लौम तु जोंग जोंग ते वो इन हुआ तो कैन मन थे नान नेक्स्ट कन प्ले तो ही इन तान दो सकने तो इस गीत का आनंद लेते हैं सुन जरा

प्यारे श्रोता, ये एफएम जोर शोर शिमला फसाद है और मैं हूँ आपके आरजे सांपुई, फिर वापस आप सभी के लिए। इस प्रसारण में हमें F4 आजमा और स्टीरियो नेशन फिल्मों से लिया गया गीत सुनने को मिलेंगे और यहाँ पे सबसे पहला गीत रहेगा पल पल दिल के पास, अजय सिन्हा द्वारा गीत का आनंद लेते हैं।

अभी जो हमने मसा गीत सुना है वो है स्टीरियोनेशन से लिया गया गीत मा वलिद कानो आ गया। यहाँ पे अगला गीत रहेगा तेरे नाम जैकपॉट फिल्म से लिया गया गीत है और कन एफ एम से वोइंग कन लिसनर दो उन तक में पछतक में रमत हुई रियल कंसाना अपोई कंती ए मैं माँ माँ पालिन है लाही नी से अलाउथंग अलाउथंग तो माँ मुनि रम लो दिन उलुक तक अलाउ इतला कता निबुक से तो इस गीत का आनंद लेते हैं जैकपॉट फिल्म से लिया गया गीत तेरे नाम।

अभी जब ने सुरीली सी आवाज में गीत सुना है वो है जैकपॉट फिल्म से लिया गया गीत तेरे नाम। और यहाँ पे अगला गीत रहेगा अगर तुम मिल जाओ, श्रेया घोषल और इमरान हाशमी द्वारा गीत का आनंद लेते हैं।

अभी जो हमने सुरीली सी आवाज में गीत सुना है वो है अगर तुम मिल जाओ श्रेया घोषल और इमरान हाशमी द्वारा गीत है। यहाँ पे अगला गीत रहेगा के द्वारा गीत क्या मुझे प्यार है, वो लम्हे फिल्म से लिया गया गीत का आनंद लेते हैं। उससे पहले आपके संदेश की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे वी कुंगते अलव लंगा आर जे उंग इन सुखे नी एफ एम जवाई फैन क्लब मेम्बर तान सुन नि लुंग सियाथलाक तक अरुणिया निये तेरो अवयम वंग वंग बोक्सिया अन हनरे तो मे तुर हन गई तो अफे चुआन इन अंगे नुक्त पोती उल रूम रूम मैया अंगे एस एम एस रन थन एक्टिव एम एम ए छी हिंदी सेगमेंट दाते फे चुआन ला रन थंग तय मै एम एम छी ना अंगे एक्टिव लिसनर जिंग अमी खानिया अवयम दो अंगे मई अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला गीत रहेगा क्या मुझे प्यार है वी कुंगते मामुनिरम लोतेले तुन हुना एफ एम जो लौंगाई थतु जोंग जोंते इन तानी से तो इस गीत का आनंद लेते हैं।

वो था शान द्वार गीत, वो पहली बार। और यहाँ पे अगला गीत रहेगा पहला नशा, जो जीता वही सिकंदर फिल्म से लिया गया गीत का आनंद लेते हैं। तो उन्होंने एफ एम जो ओलाई तो पिचोंग ते चान मारी इना लदु एम एम फौची ना अलवाई था नी से। तो इस गीत का आनंद लेते हैं पहला नशा।

प्यारे श्रोता, इस समय आ गया है इस प्रसारण के आखिरी गीत का और यह पे अगला गीत रहेगा जान निसार अरिजीत सिंह की आवाज में और ये गीत जो आप सभी एफएम लिसनर्स के लिए है और अगले प्रसारण में आपके साथ रहेगी आपकी प्यारी सी आरजे आरजे ते आप सभी के लिए। तो इस गीत का आनंद लेते हैं।

प्यारे श्रोता, ये एफएम जो इस दशमलव सात है और मैं हूँ आपकी आरजे सांगपुई। फिर वापस आप सभी के लिए। इस प्रसारण में हमें एफ फोर आसमा और स्टीरियो नेशन फिल्मों से लिया गया गीत सुनने को मिलेंगे। इस प्रसारण की शुरुआत के लिए सबसे पहला गीत रहेगा आसमा फिल्म से लिया गया गीत तुमसे ही प्यार, और ये गीत जो आप सभी एफएम लिसनर्स के लिए है।

अभी जो हमने मस्त सा गीत सुना है वो है आजमा फिल्म से लिया गया गीत तुमसे ही प्यार, और यहाँ पे अगला गीत रहेगा ये जवानी है दीवानी फिल्म से लिया गया गीत, और ये कीजिए आप सभी FM लिसनर्स के लिए है।

अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला गीत रहेगा दिल मांग रहा है और ये गीजे खास करके गुड बॉय ते जानकिस बॉय दुर्गेश नगनपुर मिंग मोई ते ते एलजत साई लव वी कुंग ते लेतुन हुना एफएम जो वोई लवाई थमेक तू ते इन तानी से तो इस गीत का आनंद लेते हैं दिल मांग रहा है तो इस गीत का आनंद लेते हैं।

अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला गीत रहेगा धूम मचाले जॉन अब्राहम और ईशर योल द्वारा गीत का आनंद लेते हैं और ये खींचे आप सभी एफएम लिसनर्स के लिए।

वो था तुम मिले नीरज श्रीधर की आवाज में। अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला गीत रहेगा सोना कितना सोना है, उदित नारायण और पूर्णिमा द्वारा गीत का आनंद लेते हैं।

अभी जो हमने गीत सुना है वो है सोना कितना सोना है उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज में। और यहाँ पे अगला गीत रहेगा दिल है तुम्हारा फिल्म से लिया गया गीत मोहब्बत दिल का सुकून। और ये गीत जो खास करके जॉन अगस बॉय आपके लिए है एसएमएस जॉन अगस बॉय है एस पी नमस्ते तकिन होंगला ड्यूटी लेवत ला इहो को फिल्म खुरला नेक्सीता करण लाने अरंतिया नंगपो हूं नाम तक वही नमन सुनजम जेल तुरंत दुसक नकलान से नहीं। तो इस गीत का आनंद लेते हैं मोहम्मद दिल का सुकू और ये गीत खास करके जॉन अगस बॉय ले छियान तेरन लाऊ इतला कतान से। तो इस गीत का आनंद लेते हैं।

प्यारे श्रोता, समय आ गया है इस प्रसारण के आखिर गीत का और यहाँ पे अगला गीत रहेगा आते जाते हैं। मैंने प्यार किया फिल्म से लिया गया गीत का आनंद लेते हैं।

प्यारे श्रोता, ये एफएम जोई 100.7 साथ है और मैं हूं आपकी आरजे सांगपुई। फिर वापस आप सभी के लिए इस प्रसारण में हमें आशाएं, नोटबुक और यंगिस्तान फिल्मों से लिया गया गीत सुनने को मिलेंगे। शिराज उपल द्वारा गीत मेरे खुदा गीत के साथ इस प्रसारण की शुरुआत करते हैं।

वो था मेरे खुदा शिरास उपल द्वार गीत है एल जे साइलो ही और दार नि इलम लो लंग तो खा हे सु फेलते सेगमेंट मी ने गन छियालो मेंगा हिंदी सेगमेंट आपो हन लो लंग वे थो माला मो कन लो वेलकम मे मेम से नि ति खा गन तार लंग वे दु शिम शिमनी अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला गीत रहेगा दिल काश दिलदार दुनिया शान और तुलसी कुमार द्वारा गीत का आनंद लेते हैं।

प्यारे श्रोता, यह FM जोर शिमला साथ है और मैं हूं आपके आरजे सांगपुई। समय आ गया है इस प्रसारण के आखिरी गीत का और यहां पे अगला गीत रहेगा शिरा सुपल और रफाकत अली खान द्वारा गीत दाता की दीवानी कवाली। लेकिन उससे पहले यहां पे संदेश आए हैं अलजत साइलो से। एस पी एथ तुल तुल मेहरंतिया पम्पुजोंग तक से वेल दिन पुई अफल कौन व्यंग लाई लो लंग आर जी प्ले ले तुर खा नंग मा तान ले लंग आर थवे जोंग जोंग तान ले कच्छियां ते व्यंग शंग शंग मी ते तान ले आर जी जोंग जोंग तान लेल दिन पुई अफल कौन व्यंग लाई हियान रन तिया भांति लो मम एम हुन नुआम तक व इन हुन हता एफ एम जो वे लमा कन मंग हवा इन एस एम एस ते हे हो दोन थे इन कन लदोंगा कन ngai lu em em vek chawani ti kha min han sha thar sakle ola tro ai kar thar lama थोचे नाते पथियान जार दम हविला एफ एम जोई लमा कन इन टोंगले छे तोरा हन गाईला ई लविन एंड कॉल छा उला चुल शंग शंग इन ती पाते खान एफ एम जोई लो गाई थजेल तुर खान कन सोम सेवा ई नि एक्टिव तका सेगमेंट शंग शंग आ एस एम एस लौथन तु जोंग जोंग ते इन सुंगा लोम थु कन सोया हुनम तक मंगजेल तुरिन इन जवाइन दु सकना कन लान सेवनी तो इस गीत कानन लेते हैं दादा की दीवानी।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं के साथ अवसरों की तलाश करना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यविट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलांग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक के बारे में जानकारी दी है।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। जनवरी 2015 में श्री निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगाया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, मध्य प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare, and automobiles, among others. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrendra Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. He said Venezuela considers India as a stable demander for many years to come. Mr. Tandon informed that besides energy partnership, the discussions also went into broadening the economic partnership in other areas.
3: The discussions also went into broadening the economic partnership to other areas, not just in the energy sector, but also in areas like mining, animal husbandry, transportation, agriculture equipment, automotive sector, and pharmaceuticals, to try and work out ways in which Indian commercial entities can enter the Venezuelan market successfully.
2: During the conversation, the leaders also exchanged views on global and regional issues of mutual interest. Both sides reaffirmed their commitment to deepening the bilateral partnership and advancing the interests of the Global South. The 73rd plenary session of the Northeastern Council, NEC, is underway in Shillong, Meghalaya. Union Home Minister Amit Shah is chairing the session. Discussion on progress made by the CM high-level task forces constituted for critical sectors of regional development is high on the agenda. The Ministry of Development of Northeast Region said the deliberations are expected to facilitate coordinated action among states and stakeholders for achieving shared developmental goals. Northeast Vision Plan 2047 to provide a long-term roadmap for transforming the northeastern region into a vibrant hub of economic growth will also be discussed, as also the connectivity, innovation, sustainability and cultural prosperity by 2047. Union Minority Affairs Minister Kiran Rijiju today said that technology has played a crucial role in improving governance and ensuring the effective delivery of welfare schemes. He made the remarks while addressing the Reforms Utsav celebrating 12 years of reforms organized by the Ministry of Minority Affairs in New Delhi today. The minister noted that the adoption of technology has enabled ministries to bring tangible changes to the lives of beneficiaries across the country. Mera Yuva Bharat, My Bharat, has been officially recognized by Guinness World Records for achieving the title of most users to take an online quiz in one.

हाय दोस्तों, आपकी आरजे मानपी 100.7 एफएम जोगोई में आप सबके लिए आया हिंदी गीतों का आनंद लेने का समय। दोस्तों, गीत की ओर जाने के पहले मैं कहना चाहूंगी कि जो काफी सालों से 100.7 एफएम जो ओए के श्रोता होकर हमेशा हमारा साथ दिया करते थे, आज इस दुनिया से चल बसे हैं। हम रमा तुइरियल के निधन पर गहरा दुख जो है व्यक्त करते हैं। उनका जाना हम सभी के लिए एक बड़ी क्षति है, दुख है, और मैं कहना चाहूंगी वे बहुत ही नेक और अच्छे इंसान थे। उनकी यादें जो है हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। और मैं मिजो से भी कुछ कहना चाहूंगी। कर्म सल्लुक पोखा न ओतिखा कनलश्या खान्या हेत्या ए रमतुई रियाल कल तमे हे ए पोई कंतिले मिन थोंग बका ओले एसएमएस ते श्या तुरले मुतुर ओमतलो तुर छु वलुंगलेन थाक दोन ते रेंगेम कंतिने कंजवा इन पथियान इन मिन ने मिन मिनोम पुई सला रमचुंग ते जोंग जोंग पो पथियान इन थमवान मो रोसे ते हि कंटोंग चाइना निया रमतुई रियाल अरे तवुंग वुंग मे मो ए पथियान ने ना थमवांग तका चोल तोरिन दुसकना लन बाग ति थे कने तलोने चोन थमवांग तका पथियान ने ना चोल मोल से ति खा कंटोंग चाइना निया कैंसर नते नति बॉय तोलो नमुना लिम तेन पथियान आंग छुंगा ओम मोंग तेन ओम तो से चोन केनी ले अछुंगते ले अथ्यान थतक तकते एफएम जो 100.7 आ इंगेनी एसएमएस manga headline muna nge ne hun min man ho pui chen tu te zong zong po pathian thlamwan na chang theu turin nge ne du sak na kan han lan ngal bok chewa ke ni po pui kan ti em em a nge ne kan ru ru po anim rui mai ne te kha min lo shat sak don nia bik takin rama chung te zong zong pathianin thlamwan मोल रोज से देखा कंटोंग चाइना हनी ए चलना चाहूंगी मैं गीत की ओर। और ये गीत जो हमारा पहला गीत रहेगा, ये है दिल का रिश्ता गीत। रमतुई रियाल को बहुत बहुत पसंद आया करते थे और इन्हीं के नाम उनके लिए इस दुनिया में नहीं है, उनके शव अभी भी है, उनका अंतिम संस्कार भी आज नहीं, उनका अंतिम संस्कार होना बाकी है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी उनकी आत्मा को शांति मिले। दिल का रिश्ता गीत जो है उनके लिए खास खास तौर से मैं डेडिकेट करना चाहूंगी। ये रहा गीत।

दोस्तों यहाँ कई SMS आए हुए हैं, मैं जानना चाहूंगी SMS की। और यहाँ SMS जो है सबसे पहला गुड बॉय की ओर से आया है। इन्होंने कहा है FM सब ओ फैंस ले RJFL तक तक ते parlai atliak apoi vong vong ti bak soi tur kan thri si lo param ikal san tak inu pui fanau te lalpan thlamwani nom pui ro se ngain kan coding zo si lo che ti in good boy hianin ramatui rial a ui tho aran soya chuan anu pui le fanau te puthian thlamwan na an lo chan the nan hey SMS te ron thon bok ani। यहाँ अगला SMS जो है गुड बॉय अतो थिंग इन मिन लो मेन पुई दोन ने ओ पुई ngot tak mai ti ro min thong ba ka angai om don vung vung tak zet zet ne ha yahan pe Hitendra Das ki or se inhone kaha good afternoon RGG Hitendra Das from Assam। theek hai aapne hame suna hai hame acha lag raha hai। main aapko bata do yahan pe shrotaon ke beech jo ek hamara bahut purana shrota दोस्त जो है 100.7 FM जो ओए का है ना, उनका देहांत हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है। हमें बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन

हम उनकी आत्मा की शांति चाहते हैं और दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को पूरी शांति मिले, उनके घर वाले जो है हमेशा ईश्वर की कृपा प्राप्त करते रहे और सांत्वना हम सबका उनके साथ है। हम सांत्वना देते हैं, संवेदना हमारा उनके परिवार वालों के लिए हम भेजते हैं यहाँ से 100.7 FM ZOHO के थ्रू, ठीक है ना। पीसी जेसिका यहाँ पे लिखती है उमान पे इतलाई लम चिबाई हुन मन नुआम ओ नेक्स्ट खाई ड्यूटी पे इतने निंतान ओ चौन ड्यूटी नुआम बोकले रोंते ने ओले पीसी जेसिका दिखा न तो मिल लाउ थेन पुईला पीसी जेसिका एसएमएस ते मिंथन खात ता ए मेमा चु वांचान जानें ची रोंथन दे उंगत गत दोन्या ओ। और इसी तरह मैं जाना चाहूंगी दोस्तों अगले गीत की, और अगला गीत जो है लता मंगेशकर की आवाज में हम सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर सा गीत दिल तो दिल है। ये गीत जो है खास तौर से इस वक्त हमें एसएमएस देने वाले और हमें सुनने वालों के लिए जाता है।

दोस्तों, मैं चलना चाहूंगी आपके SMS की ओर। यहाँ कहीं SMS आए हैं मैंगमोई तिया की तरफ से। माँ मोनपुई नमस्ते, ड्यूटी नॉमले कह करके इन्होंने हमें SMS दिया है और हमें बहुत खुशी हुई है। मैंगमोई तिया, आपको भी नमस्ते। और इसी तरह से नंगमापो ड्यूटी नॉमले मी इरोन तियांग छे इन्होन मन नॉम करोन तियांग तोप मिन लो छन पुई लेंगे दोनों वांगिन कलोम सा। और यहाँ पे गुड बॉय लिखता है, अजी मोन पुई लो से थियामला कथा ले अंगे अरंती ने गुड बॉय हियानिन परम इथियान ते हो ही कन लोकल कल लोकल वे होना चुआन वान को थेर मोया मिन लो हुआ कंग चे ओ चेल दिन रोल लविन इलोकल मसतसिया कन ट्राई तु लुई दिंग अरें थे तिनेन पो इनिन मो कन बे से सुई तुर इन गा ngo tang le she om cancer om na hi chu in ron ngai to don si lo ipualin fm zo oya hun kan mang me kasin ilen na atang khan ilo sha chuan ilom ve ngotin karing ti in good boy hian in message ron da a kha kan lo chhiar chwa ka good boy ni e zanin chutiro na na na chu ron thon zel ro o chuan yaha pe के वाला की ओर से इन्होंने कहा है, फर्न मोहन पुए के मा तक ख्यारनी उई चुनी कफियाम बर बर गम रम ले रा तुरिया ती तोर कने तो दोन सी लो मा से दम न फम कि मचंग तो आ अनि चुन न ले से ओम न तेन अचुंगा था अनजार तो दोन सी लवा थोलेना नेरो पुई हा इन थमोंग तकिन लो मुहिल सियाई सियाई बिग तो सी आ रोंतेने निंगोत मेतिरो दो दो अफियाम गम इन फियाम बर बर्थिन खानिया पोइ तक सेट सेटने ती मई लो चु सोइ तोर ओम चिया लो ने खोवेला ल ओम कन नि म्यावा थी न तेन एंगे ने कंचुंगा था जार थीना खत्यांग खान त्रो थी न ते कंतुन विक तुर ते हलनिया हाथेन अंकल मसा आ त्यांग खानिन रमतुई रियल मासे हित्यांगा नि फुथी चुकन लो बे से लेम लोवा मासे खत्यांग खा अचनचिन कन श्यात दान नि तसियम इन थोंग तक तक जित जितनि हलोंग लेन था खोप मै जानिन ते हियान मो ओ चुचुनि यहाँ एल बी रिन थी की ओर से आर जे इव प्ले लुंग लेन थाक वे इला प्ले चुव इन चु कबॉय दे वर मतु रियल खा क उई तक से तीन इंजारा कोई तगजेत इंजारा कलोशे वे आ अलर राल कतुम अंगे हि प्लेले तुर खा इतान ओरंती ने ओले एलबी रन थे कलो मा इतान रंतिया चोन इंगे ने का निया हातेंग ते हि अथेन चुर मतुई रियालिना दु एम एम थिन ते रन खनवे थिन ते खा निया चोवांग चोन इन ए अमा पाल दे उत खान इन ला हि कन थंग दे बकनी ओ चोन दुंगा हियान इन ति हियान रंतिया साइतोल हन रमचु क उइले मै पा अंग छुंगा चोल मोय रोसे रोंती ने पा आंग छोंगा चोल तोर दु सखना आ इंगे ने कंडोलेंस मो दोंगा हियान इन अरोन थोन बोका चोन नि ए तिखारिन कंडोलेंस ते तोर पुइन ते इन रोंती ल्याम ल्यामा रमतुई रियल अछुंग ते चोन इन अनगाई थमन मेउ लोंगा तो नंगा तो नंग होना चोन इन एंग पो नि से रमतुई रियल कन उइतलांग तक जेत जेत अनि आ ओ दोंग साइट लो जोक सॉरी हेता हियान इन साइट ती चिया खा टी नेन खा लंग बॉक्स या चो वांग चो दोंग साइट लो ओ ओले दोंग साइट लो अटॉप मिन लो थेन पुई दोन निया आपके अर्जुमान पुई 8.7 एफएम जो ओय में आप सबके साथ। दोस्तों, मैं एक और गीत छोड़ जाऊंगी आप सबके लिए। ये गीत जो है निक्का फिल्म का है, सलमा आगा की आवाज में, फजा भी है जवान जवान। ये गीत जो रहेगा रमतुई रियाल के लिए के नाम, ठीक है ना दोस्तों, अंतिम गीत के तौर पे हम सुनेंगे और उसके बाद मेरे बात

आएंगे यहाँ आपके आरजे सोमा फिर से मिजो गीतों के साथ, उनका भी साथ दीजिए. वी कुंग तेरा रहते हियानिन आरजे उमान पुई नेक्स्ट खा पुरमा हिलो नान औरन तिया ओले ते चुन टाइप मोल मोल ते पुन लो ओमा कहुन हे तोपा लाकन गाय छांगा इंतान दारियतले मिनिट निया क्लो किर लियांग. ओ इसी तरह से मैं लौटूंगी आप सबके लिए 8:02 में. ये अंतिम गीत के तौर पर इस वक्त निक्का फिल्म का सलमा आगा द्वारा गाया गया फजा भी है जवा जवा. ये गीत जो है खास तौर से रमा तुइरियाल की याद में, आइए हम सब सुनते हैं.

0: सो
1: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर। पार्टिसिपेंट्स आर डॉक्टर वीके पॉल, फॉर्मर मेंबर नीति आयोग, एंड डॉक्टर एनके अरोड़ा, प्रेसिडेंट एम्स बिलासपुर। मॉडरेटर इज प्रियंका अरोड़ा।
3: स्वस्थ नागरिक किसी भी सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत ने पिछले 12 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गरीबों के लिए उपचार की बेहतर व्यवस्था, आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है। यही परिवर्तन आज करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति विषय पर आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
4: तो
3: जी, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
4: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विजनरी लीडरशिप में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड, जो कभी नहीं हुए, वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारी डायमेंशन है, लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशन को देखूं तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
3: जी,
4: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता खास नागरिक पे, खासकर जो गरीब परिवार है, इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था, उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नजर से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये जो हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं
3: जी,
4: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, मैं समझता हूँ कि इन दोनों को जोड़ के देखूं तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है, उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ।
3: जी हाँ, यह भूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के रूप में मानी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं?
5: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रुपए डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रुपए उसकी जेब से जाते थे, आज ये घट करके 35-40 रुपए के बीच में आ गया है। ये एक आमूल परिवर्तन है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पर इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती, यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है, उस बीच में एक आयुष्मान मंदिर है
3: जी।
5: तो जिसको हम एक्सेस है या स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी जो सुविधा है वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित जो एक पूरा का पूरा अभियान चला है उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं। और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं
3: जी।
5: कोविड के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे, और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयां, इलाज करने के

0: लिए वैक्सीन और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो ये किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
2: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़
1: जी,
2: उनको 5 लाख का कवरेज हर साल, उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है
1: जी।
2: और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। अब ये जो सेवाएं दी जा रही हैं, ये लगभग 1900 से ज्यादा पैकेजेस की तरह से है कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट की जरूरत है एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको टर्शरी केयर में हार्ट की सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, एनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियां, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस, उनको सामने पैसा नहीं देना है और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज्यादा अस्पतालों में, जिनमें कि कम से कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए, तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया एक आम नागरिक के लिए। ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत पीएमजे के अंतर्गत हर रोज 85,000 से 90,000 व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, रोज 80,000 से 90,000। अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज्यादा। देखिए कितने लोगों को ये फायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है। अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 1,52,000 करोड़ का फायदा जो है वो यहां तक पहुंचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, तो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी हैं, उनमें लगभग एक 0.7%, less than 1% ही बेनिफिशरीज का फायदा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ, आपको जान के खुशी होगी कि आप 2 से 2.5% लोग, मतलब कि 2.5 से 3 गुना बेनिफिशरीज को एक्सेस अब मिल रहे हैं। तो लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है कि जिनको पीएमजे का कवरेज नहीं है वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज लेने के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 2024 से इस कार्यक्रम के साथ में 70 और 70 से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को जोड़ दिया गया है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सबके लिए। तो ये 6 करोड़ नागरिक हैं जिनको की एक्स्ट्रा एक आयुष्मान भारत में जगह मिली है। ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज परिवारों को बिलोंग करते हैं और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत वयो योजना जो है पीएमजे की, उसके साथ जोड़ के वयोवंदन योजना में ये समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज्यादा बीमारियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और इस स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है और उपलब्धि है। ये इतने बड़े स्केल के ऊपर रोज दाखिले हो रहे हैं और उन सबका इलाज हो रहा है और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया है।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं, मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
0: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया

0: में इस चीज को सराहाया गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी एनएफएचएस का डेटा 2 दिन पहले आया है, 2024-25 का। एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का है
1: जी
0: और
1: जी
0: उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध हो रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने भर से नहीं है। इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खास तौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे। पूरे के पूरे टीकाकरण में हमारा अब हर बच्चा हर महिला जो है हमारे एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है। और अब इसको आगे ले जाकर के UN IT प्लेटफॉर्म है जिससे कि हर एक एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि अब जब मैं बच्चों के तक पहुंचता हूं, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता हूं, तो खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे 2 बड़ी बीमारियां हैं,
1: जी
0: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का उपयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर सुदृढ़ नहीं हुआ है लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो जो भी हमारे कार्यक्रम है, अभियान है, उसमें सबसे ज्यादा कवरेज या पहुंच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है।
1: जी
0: तो यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पाल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से। और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके, तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही है?
2: आपके सवाल में 2 हिस्से हैं। पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा।
1: जी।
2: किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं जो होती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना, उनकी सोच लेके आए। जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों की, इन्फेक्शियस बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान आरोग्य में निहित हो गई कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक, इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज के लिए, और कैंसर 3 साल में 5 साल जैसा प्रोटोकॉल है, इसपे 3 कैंसर, मुंह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी।

0: सब सेंटर वाले आयुष्मान रुपे मंदिर बन जाता। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 1,20,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया गया। हमारी पुरानी टीम थी आशा वर्कर थे एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास ANM पे कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 1,20,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतने संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया। और ये टिपिकली BSc पास हमारी नर्सेस होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेली मेडिसिन का प्रावधान हुआ
1: जी।
0: सब जगह पे 100 से ज्यादा दवाइयां, सब सेंटर वाले में 105 दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री और PHC वाले में 42 से ज्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब खत्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, जरूरत होगी तो टेली मेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा, और जो बाकी सेवाएं शुरू से इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, TB कंट्रोल, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चल रही है, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्लैनेट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है, और ये बहुत दूर तक हमें लेके जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें, और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो, और जरूरत पड़े तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर PMC जुड़ जाता है।
1: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज की जांच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो बहुत बड़ी बात है।
0: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया, बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: ये हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो हिस्ट्री में ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जो भारत का अपना सिस्टम थे, आयुर्वेद था हमारा, सिद्ध है हमारे पास, यूनानी है, ये सब हमारे भारत में पन पे हुए सिस्टम है, ये इन सब के जो योग है वो भी स्वास्थ्य के लिए भी और स्वास्थ्य से भी ऊपर का है, वो उन सब को एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको ये बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना, और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम, आधुनिक पद्धति का भी हो और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलके एक व्यक्ति को, एक नागरिक को वो दे पाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, स्वास्थ्य रहे, बीमारियां नहीं हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो, इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी। और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं, और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड
1: है। बिल्कुल, एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जैसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है, और खासकर जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: जो HPV वाला टीकाकरण है, और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने 3 कैंसर्स के बारे में बताया, एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है, उसी के लिए वैक्सीन है ये
1: जी,
2: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर, और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और हुई है हमारे देश में, इस पिछले 12-13 साल में एम्स का संख्या 1 से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए, जो अपने आप में एक गजब की चीज है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जाम्पल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या

0: इलाकों में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से जेएनके में दो हैं और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को एस्टैब्लिश, जहां से ज्यादा लोगों के पास टर्शरी केयर जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं। इन सारे में ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पे बहुत होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लेरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पर ध्यान देकर के उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है और ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता कर रही है, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य ID जैसी पहले, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
2: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया और उसके जो डिफरेंट स्वरूप है उसमें एक है कि हमारे पास हर नागरिक का इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी होगा, उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है, 87 करोड़, 140-145 करोड़ में से। इसका क्या फायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं और जब किसी ने इसको देखना है और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है तो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा और इसमें बहुत सेवा की ईज जो है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ, वो अचीव होगी। इसमें फिर जो टेली मेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेली मेडिसिन हो गया है, हमारे पास ई संजीवनी एक टेली मेडिसिन है, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती है, हजारों, और उसमें इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्पेस में टेली मेडिसिन हो रही है, इंस्टीट्यूशंस में एक रेवोल्यूशन आ गई है टेली मेडिसिन। उसके और डायमेंशन भी है कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्री बनेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री बनेगी, वो सब काम हो रहा है। लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है वो एक हिस्सा बन चुका है हमारे देश में हेल्थ सिस्टम का। हम डिजिटल हेल्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, हम बेनिफिशरीज को चिन्हित करते हैं, हम बेनिफिशरीज को फायदे के साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। सो डिजिटल हेल्थ में जो इतना बदलाव आया है और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम AI के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
0: We have just seen last 2 days some of the recent data. One of the key issues which has been bothering all of us was stunting in children. And stunting has been traditionally recognized as the quality of health services. And during last, between NFHS 5

0: 2006, I think the stunting has decreased by 12 or 14 percent points. Now, this is remarkable because this is जिसको कहते हैं बिल्कुल फंसी हुई चीज थी, जिसको ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था। और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है। तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग। लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है। अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है। इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं और खाने में खासतौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के, और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट में। आज वो बढ़ करके लगभग 95% हो गया है। ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु, असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मेटरनल मोर्टेलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है, उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो। और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सके जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हमारी तरफ।
1: बिल्कुल। अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस समय जो भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वॉज अ मेजर चैलेंज फॉर अस। सो वॉट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द COVID-19 पेंडेमिक?
2: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया। एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया। उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में, और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है, बैट से, चमगादड़ से आता है, या बर्ड से आता है, चिकन से आता है। अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं है, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरमेंट, जंगल, इन सब से सभी जुड़े हुए। तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है, उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है। तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है। हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रांग किया गया है, हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमी का सिस्टम है उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं, उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन की रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो, ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें। इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा, जो एक IDSP का सिस्टम है, 2 लाख से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है। सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया। वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी करा जाए कि सुएज में क्या वायरसेस आ रहे हैं। काफी बड़े तौर पे इन सारे को, पिछले लेसन्स को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है। और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके लिए ये स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा

0: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें कि आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए। तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं?
1: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है उनको उपलब्ध किया जाता है। देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है। इसमें हर रोज 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं
0: जी।
1: किफायती दाम पे मिलती हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाइयां तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है। बहुत फायदा होता है। अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है। और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र हैं ये सब जगह, सब प्रदेशों में, सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन जो है मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है। तो ये दो काम कर रहे हैं, एक तो गुणवत्ता की दवाइयां मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है और उसका जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते। इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है।
0: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants were Dr. V.K. Paul, former member Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, president, AIIMS Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.

आपके आरजे मोहन पी 100.7 एफएम जोय में आप सबके साथ एक बार फिर आया समय फिर से हिंदी गीतों का आनंद लेने का। दोस्तों चलिए चलते हैं गीत की ओर। मैं कहना चाहूंगी इस वक्त गीत आप सबके लिए ये रहा लग जा गले। ठीक है ना दोस्तों, लग जा गले गीत जो है आप सबके लिए जाता है।

दोस्तों, मैं कहना चाहूंगी कि जीवन जो है मिलन, जीवन जो है मिलन और मरण है ना, इस बीच के क्या है चक्र में ही घूमता रहता है। जीवन और मृत्यु का चक्र, ये जो है ना सत्य है। मैं यही कहना चाहूंगी इस वक्त जो है रमतुई रियल, जो हमारे दोस्त हैं एफएम जो के, बहुत ही चहेता श्रोता है ना दोस्तों, उनका देहांत हो गया है। बहुत बहुत दुख सबको हो रहा है, इसीलिए हम यही कहना चाहेंगे कि जीवन में जो कुछ भी होता है हमारे हाथ में तो है नहीं। जन्म और मरण केवल दो अलग अलग द्वार हैं। मृत्यु केवल शरीर का बदलना या अंत नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया भी है। और जीवन और मृत्यु सब विधाता के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। इसमें हमारा कोई वश नहीं है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण सीख जो जीवन हमें देते हैं वो है हर पल खुलकर जिए और अपने कर्मों को जो है ना हमेशा उत्तम रखने की कोशिश हम सब करें। मैं जाना चाहूंगी एसएमएस की ओर। यहाँ माँ मुनिरम लोध की ओर से एसएमएस आया है। इन्होंने कहा है, उमान पुईजोरम छनी साई चुआन मिन वेल न सवे परम अचुआन इन इन ब्याक थू तेखा मिन श्रील मना फेल अति ज्या चले ब्याक इनोम थू ते मिन श्रील सिन के चुआ चंचिन कसोई हियान कनोक औ जेला अशे ओम कति कैंसर हिचू कहोंगोई उई रंती ने मा मुनि निंगोत मेतिरो मानी लुका खानिन कनिन ब्या आ चुआन दम दोई ना नोम लाई तेंग तेपो खानिन दम दोई इना अबुल नाया ओम वे जोंग जोंग दम लो ओम पुई ते हो मो खांग हो ते ने नन गै थाक तोर तेंग ते खान इन ला ते खा रन थंग खा निया दम ते इन हो दो न मोती ला इन हेत तियांग ह्यान बिन थोंग त थुत सिया ए रम मा तुई रियल चु अंगै ओम त वोंग वोंग वत मै ते रो मा मुन अमा खा लोम ले फेल चु ले फ्याम थु दोल मी तक पफेल तक खा निया मसे कन कोता एंगमा थि थुवा ले नुन थुवा पो ह्यानिन engma sui thei kan nei si lawa pathian thu thu ania chuwang chuanin engpo ni se

कि घर कब आओगे, यही सवाल जो है हमेशा के लिए रह जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे FM फैंस क्लब के जो मेंबर हैं, हमारा बहुत ही

lạc bộ cả mấy rồi chú ý mình cần là safe box gì lâu ý mình rồi giác chả box gì lâu anh bỏ đi xe SMS cần lâu mua cần lâu mẹ mẹ mà rồi mà tôi real bảo rồi ta trong trang à itoar tuar puina chuang te tan le ngai tha to zong zong te tan la po iron dedicated ne di kha kan lo sia e a chuan ya ha pe agla sms jo he di ai ki or se and dear parama we love to you a lot but god loved you more ti heron thon ane ningot me te ro chuwang chuan in e ani chu mun nuam taka pathian ne na om to ni kan ti mai bakha jo ti vak po hi kan nei box si lo tro hi rj me rj tripura se mujhe ramlila movie ka song kya hai lag ang laga de song suna do theek hai yahan pe aap sinha moon ये है आपका नाम शायद यहाँ पे मेरा सेगमेंट ये वाला जो है ना बहुत ही कम समय है आप हम प्ले करने की कोशिश करें भी अब मेरे पास समय बचा नहीं है लेकिन मैं 10 बजे आप सबके लिए लौट आऊंगी तब तक के लिए आप अगर क्या है इंतजार कर पाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा गुड बॉय यानी अर्जे मोहन पे वो इन चो कन खोल लो थे लो इंट्रियाम इंट्रथियाम तलांग में ओ अहुन लाई अनि तलत्स्या कन कुंग पुई पखत अतल्या का कन गुई न्याय लो मनी ए पखत जेलिन कन इन कल सन जेल में दोन आ कन कल वे हुना चौन वान अंगेल तनेन वान को थेर मोया मिल लो मुआ किन करिंग आरजे ले फेंस मेंबर kal to tenen an in mu anga soitur an nga nga tangle kan lo om pui rengang che ron ti ni ka pan lom em and ya ha pe good boy ni e mi lo om pui do no fangin ka lom e o sin ha mun ठीक है ना आपने थैंक यू कहा है आपको भी मैं कहना चाहूंगी वेलकम एंड देन थैंक यू सो मच सुनने के लिए ठीक है ना हाँ चलना चाहूंगी अंतिम गीत की और ये गीत जो है तेरे नाम टाइटल ट्रैक है ये क्या है मैं मोहित की ओर से फरमाइश है रमा तुरियाल की याद में और उनको बहुत पसंद हुआ करते थे अल्लाह दो जोंग तक तक थे हे कन गाय थलोमा जान इन आहन हन गाय थवे से चन नल तिवे लो मुत तंग मले एं पो नि से अमाशा ड्रंग नान ही ही मैं मोहित ना रन थन ल्याव ल्याव और इस गीत के साथ साथ आपके और जो मन पे 100.7 एफएम जो ओए में आप सबके लिए लौट आऊंगी मैं 10 बजे तब तक के लिए मेरा फिर से इंतजार कीजिएगा ये रहा गीत

आपकी आरजू मानपी 108.7 FM जोहोई में आप सबके साथ एक बार फिर अंतिम बार के लिए दोस्तों, ये मेरा अंतिम शो रहेगा। आप सब अभी तक मेरा साथ दे रहे हैं या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन चलिए मैं आशा करती हूँ कि आप सब अभी भी जाग रहे होंगे। मेरा साथ देते रहिएगा दोस्तों, और इसी तरह से चलिए चलते हैं गीत की ओर। और हमारा सबसे पहला गीत इस वक्त रहेगा, देखना चाहूंगी दोस्तों क्या है गीत यहाँ पे, ठीक है ना? हाँ, ये नया गीत जो है इसकी ओर जाना चाहूंगी। ये गीत जो है फिर कभी गीत आप सबके लिए मैं डेडिकेट कर रही हूँ तहे दिल से मेरी ओर से।

दोस्तों, मैं यहाँ एसएमएस की ओर जाना चाहूंगी। एसएमएस हितेंद्र दास की ओर से आया है। इन्होंने कहा है, हेलो हिंदी आरजी जी, हाउ आर यू कह करके नमस्कार कहा है इन्होंने। आइजोल स्टेशन एफएम जो बैंड 100.7 MHz, वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम कह करके इन्होंने हमें यहाँ एसएमएस दिया है। इन्होंने कहा है, आई लव आकाशवाणी।

कह करके इन्होंने हमें यहाँ पे एसएमएस दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड हितेंद्र जी, मैं ठीक हूँ, आई एम गुड, मैं बहुत खुश हूँ आप मेरा साथ दे रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, ठीक है ना। और इसी तरह से अन्य और दोस्तों की ओर से भी यहाँ पे कई एसएमएस बरसे हैं, और मैं जाना चाहूंगी फिलहाल गीत की ओर। और अगला गीत हमारा रहेगा जो बहुत बहुत सुंदर है, हर जन्म के लिए। ये गीत जो है ये भी नया ही है, आप सबके लिए मेरी तरफ से जाता है, ये रहा।

दोस्तों वाकई में बहुत बहुत सुंदर गीत था। मैं जाना चाहूंगी SMS की ओर। यहाँ जेलजा मलिकता है और जे माँ मोनपुई नमस्ते नमस्ते त्वांग तकिन हो गंग चे ओ नेक्स्ट सॉन्ग FM जो ओ ngai थतु ते जिंगन मैसेज थोन तै म ए मे मिचेंद्र दास असम कन थन सकंगे रोंतिया तिन पोंग तो मै मिया लविन रोंतिनी जेलजा मजानिन त्यांग हुन थेंगा मिन।

lamin pui tika shia ting glomi memani ti khamin lo shia chak phot mai lang mo chuan tlong taka ho tura du sakna te ka dunga kalom em em a chuan hitendra das assam ap ke liye jelal zama next geet jo hai aapke liye dedicate karna chah rahe hain aapke liye ये चुन रहे हैं ठीक है ना और इनकी तरफ से तहे दिल से आपके लिए हैं और फिर मैं कहना चाहूंगी जेलजा माहिनी एफएम जो होते आरजेवी एलिपोरन इंगेने ड्यूटी ले थ्वाई थे तोरा तोरा ngaita ila anipo anute anu in aboral sana chutianga chhat anto mek lai chu nia poikan ti em em bokani ti kha in lo sha to thonga kan sui ve bokani chuan nangpo zan ina tui ta kamua nak tuk zinga te dam tak le hlim taka tho tur che in du sakna kan hlan khal bok chani se o aur yahan pe agla sms jo hai durgesh naganpur ki or se hai inhone hame sms de karke कहा है गुड इवनिंग आरजी सिस्टर नमस्कार कहा है आपको भी नमस्कार और बहुत ही अच्छा लगा आप भी अभी तक जाग रहे हैं मेरा साथ दे रहे हैं दुर्गेश और इसी तरह से जो भी गीत हम सुनने जा रहे हैं आपके लिए मैं डेडिकेट करना चाह रही हूं ठीक है ना और डेडिकेट करती हूं इसका मतलब हाँ चलना चाहूंगी अगले गीत की और अगला गीत जो रहेगा वो बहुत बहुत सुंदर है दोस्तों बहुत ही मार्मिक है आप सबके लिए मैं डेडिकेट करना चाहूंगी इस गीत को ये रहा गीत तू ऐसे मिले ये गीत आप सबके लिए खास खास तौर से मेरी ओर से तहे दिल से

दोस्तों, मैं जाना चाहूंगी तुरंत ही आपके एसएमएस की ओर। यहाँ एसएमएस आए हुए हैं मिंग मोइते की तरफ से, इन्होंने क्या कहा है देखना चाहूंगी। मा मानपुई इतान लेंगा छतु तितान रोंतिया मिंग मोइते ही मुत छुआक तोविया विन करेंगा इन पोनी से तुन थिंग इन अनि पुन मिन लोला मिन पुई नीति के शियातिन कलो मे मेम ओ मिंग मोइते चोन इन इतान करोंतिया कन लंगाई छाक तोरते चोन जान इन अतुई तक मोन अक्तुक जेंग दम तक थौले तोरिन तो सकना कहान से ओ। और यहाँ जेलल सामा लिखता है आरजे मा मोनपुई आरजे वी एलिटन चिन इरोन सोइता का चोन कतोर पुयसिन ओ कखोंगै लुतुक रिंगोत अनि पो दम चोन पथियान सारा कारले थोले नि आ चोन अरोन ड्यूटी थे करिंग अरोन तेने ओले नि ए कारले ट्यूसडे टंग चोन रोन ड्यूटी थेंगे तोरिन एंगे नि अनि पोने इन रोम ना चोन जेलल सामा ए tun na hianin RJV Iliron duty thailo wang punin khwa te polo har to viau me theya chen chu kan RJ du zong tak ten ron enge ne lan lo teng te po hianin khwa te polo har ve thi na mo chu wang chuanin nang po enge ni ihlim le var var chep ton ya o akong ei thak ni e tung tai na kan shetlang don nia ani po chuanin he fm zo oi za point pasari in akashwani aizol in chat kan tok mul mul me amo vo in nia ramatui real ni boka chuan rjv elin anu lo chan boka khatia angte kha kan nia chu wang chuan e tong tai na te kan in shetton ton theu don nia isi tarha agle geet ki aur jane ke samay aa gaya hai bas ek do hi geet hum kya hai सुन पाएंगे दोस्तों। ये रहा आप सबके लिए ये गीत जो है तुझसे प्यार सा होने लगा। ये गीत जो है बहुत ही आजकल का बहुत ही मशहूर लोकप्रिय गीत है आप सबके लिए मेरी तरफ से।

दोस्तों, अंतिम गीत की ओर जाने का अब समय आ गया है। मैं कहना चाहूंगी, जन्म से मृत्यु तक का समय ही जीवन है, जिसका उद्देश्य जो है सार्थक कर्म, प्रेम, अनुभव है ना, प्राप्त करना है। इसीलिए प्रेम की भावना रख करके जीवन जब तक है तब तक आप उसे क्या है, पूरी तरह से उसका सदुपयोग कीजिएगा और इसी तरह से प्यार बांटिए हर जगह, और कर्मों को उत्तम हमेशा रखने की कोशिश आइए हम सब करते हैं। आपकी आरजे 100.7 एफएम ज़ोन में आप सबके साथ। दोस्तों, मुझे एसएमएस देने वाले, मुझे अब तक मेरा साथ देने वाले और हमें सुनने वाले सभी श्रोताओं, सभी दोस्तों को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ। धन्यवाद आप सबका दोस्तों, और इसी तरह से आप हमेशा खुश रहिएगा और ईश्वर की कृपा जो है आप सब पर हमेशा रहे, और इसी तरह से हमारे और आपकी मुलाकातें जो है एफएम 100.7 में होती रहेंगे। मैं कहना चाहूंगी दोस्तों, आज की रात आप सब इसी तरह से अच्छी नींद सोएगा और कल सुबह क्या है, अच्छी तरह से आप पूरे स्वास्थ्य के साथ फिर से नए दिन की शुरुआत कीजिएगा। इन शुभकामनाओं के साथ आप सबको बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड शुभ शुभ शुभ रात्रि। अंतिम गीत के तौर पे मैं छोड़ जाऊंगी आप सबके लिए दीवाना है ये मन, ये चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म का एक बहुत ही सुंदर सा गीत है मेरी ओर से आप सबके लिए। ये रहा गीत।